0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: द न्यूज़
2: आयुष सिंस व्हेन डू वी डू स्क्रिप्ट्स पॉइंट पिक्चर दिस द बिगेस्ट स्टेज फ्लड लाइट्स 4K द वर्क्स
3: वेयर इज द हुक
2: देयर इज गोइंग टू बी सेलिब्रिटीज एंड गारंटीड आईबॉल्स
3: वेयर इज द हुक
2: थिंक अबाउट दिस front page advertisements and hoardings
3: bro where's the hook
2: cross platform digital first virality
3: without a hook no way the message is clear it's 2026 you got to be real in a world of reels you got to be original in a world where everything seems generated
2: that's it that's what we're looking for
3: the best campaigns
2: the hottest trends
3: the smartest brand moves on our new show
2: but wait what do we call it
3: the hook
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात
5: वाओ मामा क्या स्वाद है
4: अरे मेरे राजा
6: सबका राजा आकर मसाला
7: India's unshakable news habit

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा, सबका राजा
4: आकर मसाला। आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
5: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
6: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
4: हाउ विल यू सेलिब्रेट?
5: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
7: यू नो यू रिमेम्बर यू प्रॉमिस मी दैट यू विल कम टू कबिनी एंड डू एन इंटरव्यू विद मी। यू लाइक गोइंग टू द फॉरेस्ट?
8: दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ आवर स्टेट दैट टू द एंटायर कंट्री दैट आवर केरला इज सेक्युलर।
9: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
4: वन क्लिप दैट वेंट मोस्ट वायरल was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: India's unshakable news habit.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा का राजा और मसाला।
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: From the newsroom, to the studio, to the thick of political action.
9: Now watching NDTV 24/7.
10: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
8: When stories have impact.
11: Padmasar Joshi, managing editor and prime time anchor.
8: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
10: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding.

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार.
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ. भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड.
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है. जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की.
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री.
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट.
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: From the newsroom, to the studio, to the thick of political action.
9: Now watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
8: When stories have impact.
10: Padmata Joshi, managing editor.

0: तो हमें वो अंदाजा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी तो जाएगी, तो आग लगते तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए,
1: सड़क पर बिछा दिया।
0: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, बचाओ बचाओ बचाओ मदद करो, तो हमने उनको इशारा दिया आप इस पर कूद जाओ, तो उस पर वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे, बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर,
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की, इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचाया।
0: हाँ, वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाकये के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
0: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
0: और कि उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी बेड टाइम से आ गए, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
2: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: Probe continues in the Delhi fire tragedy which killed 21 people. The Delhi administration has swung into action, and after conducting a survey of illegal hotels and guest houses, the MCD carried out a drive shutting down all flouters. Bulldozer action was carried out today in Malviya Nagar, raising illegal shops functioning in the area. The strict action follows after fire broke out in Flourish Stay Hotel, which was operational despite an expired bed and breakfast license. As the investigation into the devastating fire at Delhi's Flourish Stay Hotel in Malviya Nagar gathers pace, details of previous criminal cases involving the hotel owner, Lovkesh Bajaj, have come under scrutiny. Bajaj, who was arrested by Delhi police in connection with the fire that claimed 21 lives, had earlier been arrested in a case linked to the alleged procurement of forged Indian identity documents and passports for Bangladeshi nationals. While the probe continues in the Delhi hotel tragedy, the stories of people who helped amid that devastating fire also continue to emerge. This is about the man who gave mattresses worth of lakhs of rupees to the guests who were jumping out of the Delhi hotel to escape from that deadly fire which claimed lives of 21 people. This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरेंस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब की ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज की, तो हमें वो अंदाजा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी जाएगी तो आग लग गई तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, बचाओ बचाओ बचाओ मदद करो, तो हमने उनको इशारा दिया आप इस पर कूद जाओ, तो उस पर वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे, बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई। सर,
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की, इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचाया।
2: हाँ, वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाकये के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
2: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
2: और उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, फारिग ब्रिगेड टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
0: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: Probe continues in the Delhi fire tragedy which killed 21 people. The Delhi administration has swung into action, and after conducting a survey of illegal hotels and guest houses, the MCD carried out a drive shutting down all flouters. Bulldozer action was carried out today in Malviya Nagar, raising illegal shops functioning in the area. The strict action follows after fire broke out in Flourish Stay Hotel, which was operational despite an expired bed and breakfast license. As the investigation into the devastating fire at Delhi's Flourish Stay Hotel in Malviya Nagar gathers pace, details of previous criminal cases involving the hotel owner, Lovkesh Bajaj, have come under scrutiny. Bajaj, who was arrested by Delhi police in connection with the fire that claimed 21 lives, had earlier been arrested in a case linked to the alleged procurement of forged Indian identity documents and passports for Bangladeshi nationals. While the probe continues in the Delhi hotel tragedy, the stories of people who helped amid that devastating fire also continue to emerge. This is about the man who gave mattresses worth of lakhs of rupees to the guests who were jumping out of the Delhi hotel to escape from that deadly fire which claimed lives of 21 people. This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरेंस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब के ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज की, तो हमें वो अंदाजा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी जाएगी तो आग लगते तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, बचाओ बचाओ बचाओ मदद करो, तो हमने उनको इशारा दिया आप इस पर कूद जाओ, तो उसमें वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे, बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की, इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचाया।
2: हाँ, वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाक्य के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
2: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
2: और उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी देर टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कि कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
0: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: brother of Twisha, joins me one-on-one for the first time.
1: शुरू में देखने को मिल गया था कि criminal mindset है. भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है, sir. They are chameleon people.
0: A brother, Major

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक

0: Probe continues in the Delhi fire tragedy which killed 21 people. The Delhi administration has swung into action, and after conducting a survey of illegal hotels and guest houses, the MCD carried out a drive shutting down all flouters. Bulldozer action was carried out today in Malviya Nagar, raising illegal shops functioning in the area. The strict action follows after fire broke out in Flourish Stay Hotel, which was operational despite an expired bed and breakfast license. As the investigation into the devastating fire at Delhi's Flourish Stay Hotel in Malviya Nagar gathers pace, details of previous criminal cases involving the hotel owner, Lovkesh Bajaj, have come under scrutiny. Bajaj, who was arrested by Delhi police in connection with the fire that claimed 21 lives, had earlier been arrested in a case linked to the alleged procurement of forged Indian identity documents and passports for Bangladeshi nationals. While the probe continues in the Delhi hotel tragedy, the stories of people who helped amid that devastating fire also continue to emerge. This is about the man who gave mattresses worth of lakhs of rupees to the guests who were jumping out of the Delhi hotel to escape from that deadly fire which claimed lives of 21 people. This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरेंस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब के ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज की, तो हमें वो अंदाजा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी जाएगी तो आग लग गई तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के बचाओ बचाओ बचाओ मदद करो, तो हमने उनको इशारा दिया आप इस पर कूद जाओ, तो उसमें वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे, बाद में लगभग 12 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की, इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचाया।
2: हाँ, वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाक्य के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान बच गई।
2: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
2: और उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी ब्रेक टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कि कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
0: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरेंस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब की ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज की, तो हमें वो अंदाजा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी जाएगी तो आग लगते तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, बचाओ बचाओ बचाओ मदद करो, तो हमने उनको इशारा दिया आप इस पर कूद जाओ, तो उस पर वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे, बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की, इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचा।
2: हाँ, वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाकये के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान बची।
2: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
2: और कि उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी बेड टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
0: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: Probe continues in the Delhi fire tragedy which killed 21 people. The Delhi administration has swung into action, and after conducting a survey of illegal hotels and guest houses, the MCD carried out a drive shutting down all flouters. Bulldozer action was carried out today in Malviya Nagar, raising illegal shops functioning in the area. The strict action follows after fire broke out in Flourish Stay Hotel, which was operational despite an expired bed and breakfast license. As the investigation into the devastating fire at Delhi's Flourish Stay Hotel in Malviya Nagar gathers pace, details of previous criminal cases involving the hotel owner, Lovkesh Bajaj, have come under scrutiny. Bajaj, who was arrested by Delhi police in connection with the fire that claimed 21 lives, had earlier been arrested in a case linked to the alleged procurement of forged Indian identity documents and passports for Bangladeshi nationals. While the probe continues in the Delhi hotel tragedy, the stories of people who helped amid that devastating fire also continue to emerge. This is about the man who gave mattresses worth of lakhs of rupees to the guests who were jumping out of the Delhi hotel to escape from that deadly fire which claimed lives of 21 people. This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरेंस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब की ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज की, तो हमें वो अंदाजा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी तो जाएगी, तो आग लगते तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, बचाओ बचाओ बचाओ, मदद करो। तो हमने उनको इशारा दिया, आप इस पर कूद जाओ, तो उस पर वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे। बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की। इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचाया।
2: हाँ, वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाकये के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
2: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
2: और कि उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी बेड टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं।

0: लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
1: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: Probe continues in the Delhi fire tragedy which killed 21 people. The Delhi administration has swung into action, and after conducting a survey of illegal hotels and guest houses, the MCD carried out a drive shutting down all flouters. Bulldozer action was carried out today in Malviya Nagar, raising illegal shops functioning in the area. The strict action follows after fire broke out in Flourish Stay Hotel, which was operational despite an expired bed and breakfast license. As the investigation into the devastating fire at Delhi's Flourish Stay Hotel in Malviya Nagar gathers pace, details of previous criminal cases involving the hotel owner, Lovkesh Bajaj, have come under scrutiny. Bajaj, who was arrested by Delhi police in connection with the fire that claimed 21 lives, had earlier been arrested in a case linked to the alleged procurement of forged Indian identity documents and passports for Bangladeshi nationals. While the probe continues in the Delhi hotel tragedy, the stories of people who helped amid that devastating fire also continue to emerge. This is about the man who gave mattresses worth of lakhs of rupees to the guests who were jumping out of the Delhi hotel to escape from that deadly fire which claimed lives of 21 people. This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरिस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब की ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज की, तो हमें वो अंदाजा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी जाएगी तो आग लगते तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के कि बचाओ बचाओ बचाओ मदद करो, तो हमने उनको इशारा दिया आप इस पर कूद जाओ, तो उस पर वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे, बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की, इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचा।
2: हाँ, वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाकये के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
2: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
2: और उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी ग्रेट टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
0: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: Probe continues in the Delhi fire tragedy which killed 21 people. The Delhi administration has swung into action, and after conducting a survey of illegal hotels and guest houses, the MCD carried out a drive shutting down all flouters. Bulldozer action was carried out today in Malviya Nagar, raising illegal shops functioning in the area. The strict action follows after fire broke out in Flourish Stay Hotel, which was operational despite an expired bed and breakfast license. As the investigation into the devastating fire at Delhi's Flourish Stay Hotel in Malviya Nagar gathers pace, details of previous criminal cases involving the hotel owner, Lovkesh Bajaj, have come under scrutiny. Bajaj, who was arrested by Delhi police in connection with the fire that claimed 21 lives, had earlier been arrested in a case linked to the alleged procurement of forged Indian identity documents and passports for Bangladeshi nationals. While the probe continues in the Delhi hotel tragedy, the stories of people who helped amid that devastating fire also continue to emerge. This is about the man who gave mattresses worth of lakhs of rupees to the guests who were jumping out of the Delhi hotel to escape from that deadly fire which claimed lives of 21 people. This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरिस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब के ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज़ की, तो हमें वो अंदाज़ा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी तो जाएगी, तो आग लगते तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब हैं, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, बचाओ बचाओ बचाओ, मदद करो। तो हमने उनको इशारा दिया, आप इस पर कूद जाओ, तो उस पर वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे, बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की, इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचाया।
2: हाँ, वो हमें बहुत पसंद इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाकये के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
2: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
2: और कि उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, फारिक बेड टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कि कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
0: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: Probe continues in the Delhi fire tragedy, which killed 21 people. The Delhi administration has swung into action, and after conducting a survey of illegal hotels and guest houses, the MCD carried out a drive shutting down all flouters. Bulldozer action was carried out today in Malviya Nagar, raising illegal shops functioning in the area. The strict action follows after fire broke out in Flourish Stay Hotel, which was operational despite an expired bed and breakfast license. As the investigation into the devastating fire at Delhi's Flourish Stay Hotel in Malviya Nagar gathers pace, details of previous criminal cases involving the hotel owner, Lovkesh Bajaj, have come under scrutiny. Bajaj, who was arrested by Delhi police in connection with the fire that claimed 21 lives, had earlier been arrested in a case linked to the alleged procurement of forged Indian identity documents and passports for Bangladeshi nationals. While the probe continues in the Delhi hotel tragedy, the stories of people who helped amid that devastating fire also continue to emerge. This is about the man who gave mattresses worth of lakhs of rupees to the guests who were jumping out of the Delhi hotel to escape from that deadly fire which claimed lives of 21 people. This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरिस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब की ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गईं। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज़ की, तो हमें वो अंदाज़ा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी तो जाएगी, तो आग लगते तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, बचाओ बचाओ बचाओ, मदद करो। तो हमने उनको इशारा दिया, आप इस पर कूद जाओ, तो उस पर वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे। बाद में लगभग 15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।

0: जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की। इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचा।
1: हाँ, वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
0: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाक्य के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान बच गई।
1: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
0: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
1: और कि उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी ग्रेट टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कि कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
0: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं। लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
2: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: From the newsroom, to the studio, to the thick of political action.
9: You're watching NDTV 24/7.
10: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
8: When stories have impact.
11: Padmasad Joshi, managing editor and